0: जनता ने चुप प्यार मान मचा रहे हैं। बोलूं दुनिया में झील की गहराई में सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जब ये फूल जो मुस्कुराते हैं,
1: पर छह भी जाते हैं,
0: जैसे ये शाम जो हंसती उठाए।